0: और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूँ नाजिल करता हूँ, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं इसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और जकात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो उस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं, और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले।
1: ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, ऐ कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बर्रे सगीर में इस सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायद आजम की कयादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ऐ अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी महब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ऐ अल्लाह, अपने रहम और करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत व आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ऐ अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता।
0: आमीन।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बाहर आहिनि।
2: स्टोर
3: गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
4: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-5 69-0300-003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-898
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहे

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Ashik Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Group Pur Etmat. Aimba Akhtiar 3S Dealer. Ashik Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 0242460100
4: असलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
4: न अदा
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
5: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
2: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते सहन बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। स्विट्ज़रलैंड तस्दीक करे छॾी, अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी। व्हाइट हाउस जी तस्दीक स्विस इख़्तियारनि मूजिब बदन स्टॉक में अमेरिका ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। जंगबंदी मुआदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनान इख़्तियारनि मूजिबि इसराइली फ़ौज नपटिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जीअं लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा। अमेरिकी दिफ़ा वारे वज़ीर जो यूरोप में पंहिंजी फ़ौज जी मुक़ररी बाबति जाइज़ो वठण जो ऐलान। ईरान सां जंग दौरान अमेरिकी फ़ौज ते पाबंदियूं लॻाईंदड़ यूरोपी मुल्कनि ते बि तनक़ीद। ब्रसल्स में यूरोपी यूनियन जे दिफ़ा वारनि वज़ीरनि जी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे पीट हेक्सेथ चयो त हीउ अहिड़ो जाइज़ो हूंदो जंहिं में कुझु मुल्क कामयाब ऐं कुझु नाकाम थींदा। पीट हेक्सेथ तकरीर दौरान कुझु यूरोपी मुल्कनि खे मुफ़्तखोर करार ॾींदे अमेरिका खां फ़ाइदा खणण जो बि इल्ज़ाम लॻायो।

कंबर वेझो जमीन मां मिट्टी खणण था बिंदुरिन में झेड़ो नौजवान कतुल बजना जख्मी गोठ अलीबख्श पमर में जरई जमीन मां मिट्टी खणण था पमर बरादरी की बिंदुरिन में झेड़ो थो फायरिंग के नतीजे में बिलावल पमर मारजी वो मुजीब आजम पमर जख्मी थो पुलिस मूजिब बई धुरियो पान में वेझा अजीज आन कंदकोट में भी जमीन के मामले ता बिंदुरिन में झेड़ो थो एक जनो जख्मी गोठ बादल खान सब्जोई में झेड़े दौरान फायरिंग इमरान सब्जोई जख्मी थो चक वेझो पोरहत मुबैना तशद बाद दिल बीहण सबब फोर्थ एनसी दाखिल एक जनो गिरफ्तार टोपी चौक पाड़े जो रहवासी मंजूर अहमद शेख मुबैना तशद बाद दिल बीहण सबब फोत थियो पुलिस इल्ज़ाम हेठ आयल मुंतजर शेख के गिरफ्तार करे वरतो वधीक जांच जारी

0: अफ्रीकी मुल्क नाइजर जे एयरपोर्ट ते हथियारबंदनि जो 5 महीननि दौरान ॿियो हमिलो, 35 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100।
5: खुशखबरी हाँ अवे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर राबते 385-569-0300-3-8-5-6-9।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वजन स्टॉक में अमेरिका ईरान विच में रिथियल गालियों न थींदियूं। गालियों के लिए तैयारियों जो अमल जारी रहंदो। स्विट्जरलैंड गालियों की मेजबानी सहूलतकारी के लिए बदस्तूर तैयार है। स्विस इख्तियारनि गालियों की नई तारीख बाबत आगाह न किया।

जंगबंदी मुआहदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलन में वधीक 16 शहरी शहीद, केतरा ही जख्मी। लबनान इख्तियार मूजिब इसराइली फौज नबतिया से बम्बारी कई है, जैसे नतीजे में केतरा ही घर भी तबाह थे। इसराइली हमलन के नतीजे में 16 शहरी भी शहीद थे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू है तो इसराइली फौज लबनान के बफर जोन का हटंदी, गजा जहां लबनान में भी खतरा खत्म कया वा।

सुभाणे पेट्रोल जी कीमत में वॾी घटाई जो इम्कान। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जी कीमत में 55 रुपियनि ताईं घटाई करण ते गौर करण लॻी। ज़रियुनि जो चवण आहे त नाणे वारी वज़ारत लेवीज़ वधाइण ऐं पेट्रोल 20 रुपया ऐं डीज़ल 36 रुपया फी लीटर सस्तो करण जी ख़्वाहिशमंद आहे। हतमी फ़ैसिलो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ कंदो।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदो में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जी टे ॾींहं बि अलामती भुख हड़ताल। आबादगारनि, हारियुनि, पोहतनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगारनि मूजिबि बदीन ज़िले में पाणीअ जे बहरान सबबि ढोर बि उञ बि घिमरी रहिया आहिनि।

कंबर वेझो जमीन मां मिटी खणण था ॿिनि धुरनि में झेड़ो नौजवान कतल बजना जख़्मी ॻोठ अलीबख्श पवर में ज़रई ज़मीन मां मिटी खणण था पवर बिरादरी जी ॿिनि धुरनि में झेड़ो थियो फायरिंग जे नतीजे में बिलावल पवर मारिजी वियो मुजीब ऐं आज़म पवर ज़ख़्मी थियो पुलिस मूजिब ॿई धुरियूं पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि कंदकोट में बि ज़मीन जे मामले तां ॿिनि धुरनि में झेड़ो हिकु ॼणो ज़ख़्मी ॻोठ बादल खान सब्ज़ोई में झेड़े दौरान फायरिंग इमरान सब्ज़ोई ज़ख़्मी थियो।

0: खैरपुर में मलाह बिरादरी के चंगे मुड़स जहाँ कातिल गिरफ्तार न थे खिलाफ SSP ऑफिस आरो धरनो। मुजाहरीन जो गुलाम नबी मलाह जहाँ कातिल गिरफ्तार करने जो मुतालबो। मुजाहरीन मूजिब जवाबदारन हमलो कर असाने चंगे मुड़स गुलाम नबी मलाह के कतल किया है। पुलिस कुछ बुधने के लिए तैयार ना जवाबदार गिरफ्तार किया वन। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के एयरपोर्ट से हथियारबंद 5 महीनों दौरान बो हमलो। 35 जणा मारे वाया केतरा ही जख्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हानी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3855-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94
2: जह वक्त ही जोगी जाग्या हिन

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जी कीमतुनि में वॾी घटताई करण जो ऐलान। कौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त ईरान ऐं अमेरिका विच में मुफ़ाहिमती यादाश्त ते सहियूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहिनि। इस्लामाबाद वाइदे खे हथ में शिकिल ॾियारण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम किरदार अदा कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। ईरान अमेरिका वाइदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ऐं क़ौम जा थोरा मञा, मूं खेसि पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत जे लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदीअ सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। जंगबंदीअ सां आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे। अवाम खे पेट्रोल जे मद में अॼु राति वॾो रिलीफ ॾिनो वेंदो। इस्लामाबाद वफ़ाहिमती यादाशनामे ते सहन बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिबि बर्जनस्टॉक में अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी वाइदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनान इख़्तियारनि मूजिबि इसराइली फ़ौज नफ्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जीअं लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
2: Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: American Naib Sadr J.D. Vance Israeli wazirin te sakht tanqeed Israel te American ehsanan jo zikr kar chhadyo. J.D. Vance chayo ta American hathyar Israel ke bachaa raha hain. Israeli wazir duniya mein pahindi akele ae taqat aur ittehad ke nishano banaa raha hain. Sadr Trump te tanqeed kandar Israeli wazirin ke hosh kha kam vathan ghuje. Sadr Trump te tanqeed karan badra zameeni haqeeqatun jo jaizo vathan. जेडी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुजे दुकान जी बेड हरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: मौजूद आहिन फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
2: अमेरिका ईरान विच में रिथियल गालियों मुलतवी व्हाइट हाउस तस्दीक कर छी अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस जो भी स्विट्जरलैंड जो दौरो मुलतवी कर स्विस इख्तियार मूजिब बजन स्टाफ में अमेरिका ईरान विच में रिथियल गालियों न थन्दियों गालियों के लिए तैयारियों जो अमल जारी रहो स्विट्जरलैंड गालियों की मेजबानी ए सहूलतकारी के लिए बदस्तूर तैयार है स्विस इख्तियार गालियों की नई तारीख बाबत आगाह न किया।

0: जंगबंदी मुआहदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलन में 16 शहरी शहीद, केतरा ही जख्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिबि इसराइली फ़ौज नपटिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जे लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: American Naib Sadr J.D. Vance Israeli wazirin te sakht tanqeed, Israel te America ehsanan jo bhi zikr kare chhajo. J.D. Vance chayo ta America hathiyar Israel ke bachaye raha hain. Israeli wazir duniya mein panje akele ae taaqatwar ittehad ke nishano banaye raha hain. Sadr Trump te tanqeed kandad Israeli wazirin ke hosh kha kam uthan guje. सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

कंबर वेझो जमीन मां मिट्टी खणण तां बिंदुरिन में छेड़ो नौजवान कतल बजणा जख्मी ॻोठ अलीबख्श पवर में ज़रई ज़मीन मां मिट्टी खणण तां पवर बिरादरी जी बिंदुरिन में छेड़ो थियो फायरिंग जे नतीजे में बिलावल पवर मारिजी वियो मुजीब ऐं आज़म पवर ज़ख्मी थियो पुलिस मूजिबि ॿई धुरियूं पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि कंदकोट में बि ज़मीन जे मामले तां बिंदुरिन में छेड़ो हिकु ॼणो ज़ख्मी ॻोठ बादल खान सब्ज़ोई में छेड़े दौरान फायरिंग इमरान सब्ज़ोई ज़ख्मी थियो मटियारी भरिसां शाहपुर दरपुर थाणे जे हद में कम दौरान भितिकरण सबबि पोरत दॿिजी फौत ॻोठ सिंगार में कम दौरान भितिकरण जे नतीजे में रसूल बख़्श पोसो दॿिजी फौत थियो कराचीअ में मुर्शादी लहर पिनकीअ जे गिरफ़्तार कयल ॿिनि साथियुनि खे अदालत में पेश कयो वियो अदालत जवाबदार आकिब ऐं गुलाम अब्बास खे ॿिनि ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते जांच आफ़िसर खां अॻु भराई रिपोर्ट बि तलब करे वरिती

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जमात इस्लामी जो पेट्रोल ऐं बिजली सस्ती न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज, पेट्रोल ऐं बिजली सस्ती करण जो मुतालबो। बदीन ऐं कंधकोट में जमात इस्लामी जे सॾ ते एहतजाज कयो वियो। अॻवाननि चयो आहे त आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियो आहे, पर हिते न पियो कयो वञे। हुकूमत आवाम ते रहम करे ऐं पेट्रोल सस्तो करे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारन ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
6: न अदा
8: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
9: 03013992836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आप सुन रहे थे जीए। अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: तस्दीक करे छी अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो भी स्विट्जरलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिब बजनस्टॉक में अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्जरलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी मुआदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिब इसराइली फ़ौज नफ्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जीअं लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
2: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: American Naib Sadr J.D. Vance Israeli wazirin te sakht tanqeed. Israel te American ehsanan jo bhi zikr kar chhadyo. J.D. Vance said America hathiyar Israel ke bachaye raha hain. Israeli wazir duniya mein panje akele aur taaqatwar ittehad ke nishano banaye raha hain. Sadr Trump te tanqeed kandar Israeli wazirin ke hosh kha kam bathan gurje. सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

0: वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि पासपोर्ट ऐं इमिग्रेशन बाबति इजलास, हुकूमत जो पासपोर्ट खे मुकमल तौर ते ई पासपोर्ट तरफ़ मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त ई पासपोर्ट ते मुंतकिली सां पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सघिबो। सिंधाई कोर्ट गदले पाणी जी फरहमी ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते घोटकी जे डीसी खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। 7 जुलाई ते रिपोर्ट बि पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त आइन जे आर्टिकल 9 तहत साफ़ ऐं महफ़ूज़ पाणी हर शहरीअ जो बुनियादी हक़ आहे। मामिलो इंसानी वक़ार, सिहत ऐं ज़िंदगीअ सां सिधो सओं लाॻापियल आहे। धुरनि खे नोटिस जारी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। निंदो में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जी 3 ॾींहं बि अलामती भुख हड़ताल। आबादगारनि हारनि, परहतनि, शागिर्दनि ऐं शहरनि जी भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगारनि मूजिब बदीन ज़िले में पाणीअ जे बुहरान सबबि ढोर बि उञ विघे मरी रहिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3 85-569-0300-3855-69।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ
2: 93.4
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 03-00-33-8569।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: सुन रहे थे। अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: वफा के घर वजीर समेत बी कयादत के भेटा पेश कई वही। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाशनामे ते सहन बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिब बजन स्टॉक में अमेरिका ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी मुआदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिबि इसराइली फ़ौज नफ्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। हिज़्बुल्लाह जे जवाबी हमलनि में 14 इसराइली फ़ौजी मारिजी विया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जे लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
2: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: American Naib Sadr J.D. Vance Israeli wazirin te sakht tanqeed. Israel te American ehsanan jo bhi zikr kar chhadyo. J.D. Vance chayo ta America hathiyar Israel ke bachaye raha hain. Israeli wazir duniya mein pande akele ae taqatwar ittehadi ke nishano banaye raha hain. Sadr Trump te tanqeed kandar Israeli wazirin ke hosh khan kam wathan ghurje. सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

वायदे जी भञकड़ी जो जवाब तबाह कंदड़ हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालेबाब खबरदार कंदे चयो आहे त सुप्रीम लीडर जे हुकुमत ते अमल करण जा पाबंद आहियूं। तय थियल वायदे जे समूरनि शिकुनि ते अमल थियणु घुर्जे। जेकॾहिं ॿी धुर ॿीहर जंग तरफ़ वधी त जवाब पहिरीं खां वधीक सख़्तु हूंदो। ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि में का बि रंड कंदा। ईरान ऐं अमेरिका विच में ॻाल्हियूं महरमल हराम सबबि देरि जो शिकार थियूं आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़दार चयो आहे त जुलाई जे पहिरें हफ़्ते में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई जी तदफ़ीन थींदी। 60 ॾींहनि में मरहलेवार ॻाल्हियुनि वारो अमल मुकमल थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां अॼु राति तेल जी क़ीमतुनि में वॾी घटिताई करण जो ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त जंगबंदीअ सां आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे। हुकूमत पेट्रोल सस्तो थियण ते रिलीफ ॾियण जो वाइदो कयो हो। आवाम खे पेट्रोल वॾो रिलीफ ॾिनो।

0: सिंध असेंबली में अपोजिशन जी बजट ते सख्त तनक़ीद, करप्शन रोकण ऐं अवाम जे फलाह वारनि मनसूबनि ते कम करण जो मुतालबो। एम क्यू एम जे आमिर सिद्दीकी चयो त सिंध हुकूमत अॼु ताईं पेश कयल कंहिं बि बजट ते अमल नाहे कयो। सखर हैदराबाद जी अस्पतालुनि जी हालत ख़राब आहे, नंढनि आबादगारनि जे लाइ बजट में कुझु बि नाहे। शारिक जमाल चयो त सिंध खे 18 सालनि दौरान वफ़ाक खां 71,000 अरब मिलिया आहिनि पर अवाम ते ख़र्च नाहिनि थिया। कराची खां कश्मीर ताईं रुगो मसला ई मसला आहिनि, केरु हल करण वारो नाहे। हुकूमती एम पी ए बजट जी साराह कंदे चयो त सिंध हुकूमत बहितरीन बजट पेश कई आहे, अवाम जी तरक़ी जे लाइ पीपल्स पार्टी कम कंदी रहंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8555-69।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: किरदार आहे नायब वज़ीर आज़म सागदार ऐं घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार में सारा जोगो रहियो। ईरान अमेरिका वायदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वकार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तानी कौम जा थोरा मञा, मूंखे पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदीअ सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी आख़िरी रस्मुन में शिरकत जी दावत ॾिनी आहे। आख़िरी रस्मूं 3-4 जुलाई ताईं थींदियूं। पाकिस्तानी वफ़द बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमेरिका मुआहदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे भेटा पेश कई वई। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाशनामे ते सहन बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक करे छॾी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिब बर्जन स्टॉक में अमेरिका ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी मुआहदे में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिब इसराइली फ़ौज नफ्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। हिज़बुल्लाह जे जवाबी हमलनि में 14 इसराइली फ़ौजी मारिजी विया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफर ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जी लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
2: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the people I have anywhere left in the entire world.
1: American Naib Sadr J.D. Vance Israeli wazirin te sakht tanqeed. Israel te American ehsanan jo bhi zikr kar chhadyo. J.D. Vance chayo ta American hathiyar Israel ke bachaye raha hain. Israeli wazir duniya mein pehle akele aur taaqatwar ittehadi ke nishano banaye raha hain. Sadr Trump te tanqeed kardar Israeli wazirin ke hosh khan kam uthan ghurje. सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे।

वायदे की भंजकड़ी जो जवाब तबाह कदड़ हों। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालेबाब खबरदार कर सुप्रीम लीडर के हुक्म से अमल कर पाबंद आयू तय थल वायदे के समूर शिकुन अमल थे घुर्जे जैसे बी धुर बीहर जंग तरफ बधी तो जवाब पहरी का सख्त हों। ईरान अमेरिका गाल में का भी रंडक न है। ईरान अमेरिका विच में गालू महरमल हराम सबब देर जो शिकार थियन। नायब वजीर आजम इसहाक डार है जुलाई के पहले हफ्ते में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन थी। 60 दिन में मरहलेवार गालन वारो अमल मुकम्मल थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा आज रात तेल की कीमतों में वही घटाई करण जो ऐलान। कौमी असेंबली में खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो तो जंगबंदी से आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे। हुकूमत पेट्रोल सस्तो थियण ते रिलीफ देने जो वायदो कयो हो। आवाम के पेट्रोल के मद में अज रात वो रिलीफ दिनों वो।

सिंध असेंबली में अपोजिशन जी बजट ते सख्त तनक़ीद, करप्शन रोकण ऐं अवाम जे फलाह वारनि मनसूबनि ते कम करण जो मुतालबो। एम क्यू एम जे आमिर सिद्दीकी चयो त सिंध हुकूमत अॼु ताईं पेश कयल कंहिं बि भयो सखर हैदराबाद जी अस्पतालुनि जी हालत ख़राब आहे। नंढनि आबादगारनि जे लाइ बजट में कुझु बि नाहे। शारिक जमान चयो त सिंध खे 18 सालनि दौरान वफ़ाक खां 71,000 अरब मिलिया आहिनि पर अवाम ते ख़र्च न आहिनि थिया। कराची खां कश्मीर ताईं रुगो मसला ई मसला आहिनि, केरु हल करण वारो नाहे। हुकूमत एम पी एस बजट जी साराह कंदे चयो त सिंध हुकूमत बहितरीन बजट पेश कई आहे, अवाम जी तरक़ी जे लाइ पीपल्स पार्टी कम कंदी रहंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि पासपोर्ट ऐं इमिग्रेशन बाबति इजलास। हुकूमत जो पासपोर्ट खे मुकमल तौर ते ई पासपोर्ट तरफ़ मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त ई पासपोर्ट ते मुंतक़िली सां पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सघिबो। अफ़गान तालिबान जे पाकिस्तान में ड्रोन हमलनि वारी दावा कूड़ी निकिती। पाकिस्तान हिकु ड्रोन किराइण जी तस्दीक करे छॾी। सुसमा वारी वज़ारत अफ़गान तालिबान जे ड्रोन हमलनि जी दावा खे रद्द कंदे चयो आहे त अफ़गान तालिबान के पी ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़नि में दाइश जे मुबैना थाकनि खे ड्रोन सां निशानो बणाइण जी दावा कई हुई। दाइश समेत केतिरियूं ई दहशतगर्द तंज़ीमूं अफ़गान तालिबान जे कंट्रोल हेठि आयल इलाइक़नि में मौजूदु आहिनि। अफ़गान तालिबान पाड़ेसरी मुल्कनि में दहशतगर्दनि जी पुठिभराई खे लिकाइण जे लाइ कूड़ा बयान जारी करे रहिया आहिनि। तालिबान जो हिकु ड्रोन पाकिस्तान जी हदुनि में खैबर भरिसां दाख़िल थियो हो, जंहिंखे एयरफोर्स तबाह करे छॾियो।

0: सिंध हाई कोर्ट गदली पानी की फरहमी खिलाफ दरख्वास्त घुटकी के डीसी की जाती हैसियत में तलब कर वरतो। 7 जुलाई से रिपोर्ट भी पेश करने जो हुक्म। अदालत चयो आइन के आर्टिकल 9 तहत साफ ए महफूज पानी हर शहरी जो बुनियादी हक है। मामलो इंसानी वकार सेहत ए जिंदगी से सीधो सौ लागपल है। धुरन की नोटिस जारी। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पानी की खोट खिलाफ आबादगार जहा मुजाहरा धरना। निंदो में पानी की खोट खिलाफ आबादगार की 3 भी अलामती भुख हड़ताल। आबादगार हारन पढ़तन शागिद ने शहर की भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगार मुजिब बदीन जिले में पानी के बहरान सबब ढोर भी उंज विघे मरी रहा। कंबर वेझो जमीन में मिट्टी खड़न ताबिंदुर में झेड़ो नौजवान कतुल बजना जख्मी। गोट अलीबख्श पवर में जरई जमीन में मिट्टी खड़न था पवर बिरादरी की बिंदुर में छेड़ो थो। फायरिंग के नतीजे में बिलावल पवर मारे वो मुजीब आदम पवर जख्मी थे। मुबारकपुर वेझो आबगा दियार नारी के कारण इल्जाम हेठ कतल थे इंकशाफ बजना गिरफ्तार। पुलिस सेवायत नारी साइमा के मामे रसूल बख्श सरकी 3 जन से गदी कतल किया है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202024246010।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: रौनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़नि जड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राबते जे लाइ 0302-01-8003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगरलस डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

بھی مردان تھیا جو شوق پیالو شیر

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 156 0306 9
1: अटोस आई होंडा शोरूम साइकिल जो

0: Gentlemen, Managing Director, Mazhar School System, 03000027234. Nisar Ahmed Memon, Principal, Mazhar School System, Mehrapur, 03013865453.
1: मेहरान आयरन स्टीपू
2: सरी दरवाजे अड्डा
1: कुछ पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: रابطे लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
3: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐ नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐ वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं ऐ हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड 03555
4: दुकान खोलियो कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब कराइण ते
5: मुझे दुकान जी भेट हलंदी
6: हाँ दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस
7: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए।

0: एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569, 0300-3583-569।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बे डरंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: वाह नई गाड़ी।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: ईरान ऐं अमरीका विच में मफ़ाहमती यादाश्त ते सयूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहिनि। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त इस्लामाबाद मुआहिदे खे हतमी शिकिल ॾियारण में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम किरदार अदा कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदार बि साराह जोॻो रहियो। ईरान अमरीका मुआहिदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ार वधियो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ऐं क़ौम जा थोरा मञिया, मूंखे पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदीअ सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्ला अली खामनाई जी आख़िरी रस्मुनि में शिरकत जी दावत बि ॾिनी आहे। आख़िरी रस्मूं 3-4 जुलाई ताईं थींदियूं। पाकिस्तानी वफ़द बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमरीका मुआहिदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे बि भेटा पेश कई वई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।